दिया सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिदा सरसन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र हरि हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च।